0: मी मी तो माँ अंधेरी खा कुती
1: पैसा का नेगी गेंदो तेवड़ी अरे मी हुए ना नूरा गे उफ मम्मा
0: हुए ना ती की कुरन ती आई की कुरा
1: अरे मी अरे गे हक्कु तो होदा फरीशते नूरा गे मम्मे नो मसे के विस नुकुराती ए मौसम कुच्चा के मम्मे अब ऐ एनी के अहरन गे दे अहरन मी आई मगे दरे फुल नूरा गेंदा
0: नो होइना नोरा मम्मे की आने नो क एने गे ने एकमको अहरे एने देनी उफ मम्मा के लोबी एने अहरे दे के लोबी वे होइना
1: पे लोबी आ लोबे
0: मेये
1: नुआने
0: नो
1: नोरा के लोबे दुआ को फरीशा करनु दे बे आदि बोना उमर के लोग वेस फरीशा का दाई मी को देने नूदी बैल
0: नूने
1: उमर देंग आलू कहवे ने कुराने हन्ना मी कब माने फरीशा बारी को दिलो लूं बेर को लूं मफ़ाहो इंगे चता
0: नू नू ये तो की उमर आहार देके लोग भी वे आहार इंगे दिलो लूं रोला ला कर आहार इंगे बहनू आना नू होइना तीन बोना ती काको हाँ ना नितुनी था मैं के हैंग आहार उकुरी एक कब वैसे घूमेंगे थी कुड़ कुड़ नूरा या उमर दो कफ़ा आमिन ले दिया ही थी होइना एंड उन था एर वो इधर ही फुलगे रुई अड़े नी बोनो ती हिता कं एर अकुआसरे नुकुरी एर उमर उगे एकांड वेरी कमेंट नुफेनु नो
1: ए हिमे बेंगे
0: नो आरे हिमे ने नुआन
1: हिमे वांज है
0: नुआन हैंग आहर वंदे गे मियो के कारण तो फोए दी दीरी उलो मुका कोला ते दी कोंदी नी आहरे हैंग आहर वहु मालूम गे बुरी ती की वेगे कों हग कों कों मुने दक्कन
1: ए आहरे गे बुरी मे मगे मगा मोदा उमर के दीरी उलो मा आहरे गालू अन्ना ना बलचे फरीशा जहने अमिल ले दा आहरे नूरा बस के दाना हंदा कुराते
0: नो नो नूरा इनु के ते वेने उमरु उमरु आरे सलाम करे नो उमरु नो नूरा उमरु
2: फरी फरी किने भी
0: अरे मेरु कंटने
2: क्यों ती रोनी फरी हम जी पर मैं होती है ना अरे
0: नू
2: वो फने फनो नहीं था रोई मुट्ठा है बदो
0: उमरो हुआ ही ना आई एन नूरा किंदा गुलुनी एन बुनी उमर वाहरे मरी कुफा ए नया कैवनी कुरानी है उमर आरे दो कनु लच्चे आरे के नूरा आरे के अतुंग अतुनु लच्चे
2: फरी ये हमें कनी मधुर हुआ फिर के एवज में ये का फरी शाय आहरना वैक्यन नुकरे वेने हुए ना दिए अमिल्ये कनु एकमुख परीक्षा के आरंभ के दिनों में उजाला का नूरा के मम्मे की फरी आरंग अंगनों की फरी
0: उमर आरे वर पीरु करने
2: दें बीरु नुकने फरी हाँ दौर का तुरु तुरु साला एक ही है आरे उम्र आइंद को फरीशा है नूरा का रक्का तेरे कपनी आरंग जिम्मा है दें हम जी ले आगे मुझे तो बता आर मिनी फरी का तू हिफाल ले आगे ना नूरो हम जी बता
0: की विकेंड फिर उन्होंने हुआ फिर ने
2: අබදු අබදු එබ්බස්නමගති හුන්නනි එහෙම.

0: अध्ययन की नवेफति हो रही
1: मेरी वर बड़ा हास वे
0: अनेक का टेस्ट क्या रे भी मता मन्हा मन्हा हाँ द देरा वे फ़ये
1: आहने के वर क्या कुछ है आहने न माला में कुरने
0: हास नो एब स्पेल द टी प्रोग्राम अडवे ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंगल हो दंगे ना
1: स्पेल द टी है
0: आं मिकाल कंकं दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोयतं ए प्रोग्राम उंगे गेने
1: स्पिल द टी हमे कणी दिवे राज्य गाडू
2: आदित दो होगे हवेरो हतर गड़ फनरागा
3: रिपीट बुदु दो होगे हवेरो हतर गड़ फनरागा
2: आदि बुडास्पति दो होगे हवेरो फहद जहाडो
0: एंखा सतरस्ते का सालिस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव अदे अड्डिया नुए मेगा हर्ट्स एफएम बैंड हमें कने दिवही राज्य गाडू इंतजार को लवा
4: स्पिल द टी
5: हिमबी वैक्सीन दे डोज जहुम हिमबी जहुम के फुर्सत अनुवादी हाथिं इंसेते कोड़ को दे अदि बाली जहुन कमुगावियस बाली गा बोडोरुम रक्का तेरे को दे
6: हिमबीहिं रक्का तेर वो मत देवे वैक्सीन के तेरेगा
7: मीसल्स वैक्सीन
6: एमआर मीसल्स रुबेला वैक्सीन
7: एमएमआर मीसल्स मम्प्स रुबेला वैक्सीन हिमने
6: हिमबीहिं रक्का तेर वो मा मीसल्स वैक्सीन के दे डोज फुरी हम कुरेफा वाकं याकिं कुरावा
5: हिमबीहिं के अलामते फेनिजनमा लसनु कुरावा सिही फरवा होदवा

0: ni erung ege beenung kudinna rangalang hifemi den komwa ke kurin harme mi dakkamun ai ka kullaf sugwa ka do ege ituru misaleng halanta misalaka galam galan do mi kiyani liyani tana galan nete bunani kihine
1: galamenne
0: evi kine mimu etana kiwe galanennu ki mezuge kan kine bunani
1: kane
0: evi kane ekamaku koba kamennetta evi kine
2: তফাতু বাহাকঙ্গে
0: পা কোবা খামেন নেত এই হিন্দু উর্দু ভমিয়ে না খাম এ নিমেনি কোচকা মিমা এমবে খামে ইয়াননে দেমমেনি খানে এগে আসলে কি নুন তি গালং গাল্লামে গালামুগে আসলু লফজকি আরবি বহুগে কলম কোচকা নিমেনি এমবেগে গাল্লা মেঙ্গেবনি এ মিহামতক তিকুদিন তংকোলে ইলমুগা ফিন মুন্দাওরক দিহিবগে দাইরাগতর কুড়কো বিস্তালাত ইনশাআল্লাহ মিওয়ানি কিকং তিকুদিন সাফওয়ান ফাও
2: ऐहवे जेमी हाले गेते गुल्ले एरा मम्मा में कुदेना मुहातब को वाह कदक इंग्रेस बहुम वेस मी हाडो दिवे ही बहुम वेस बेफार मुहातब करे ऐहवे जा गेते रे कमे मा हाउलु कगिना बेन कुरे मी कोन बाहे
0: टीई एम में मुहिम एसवाल मी फारो ती कुरि सवाल तो गेते खुज्जागे हया बट्टन को दे फुरतम एदुरु गे की मम्मा गे उंगु एक माने की गे गोति तेरे आइला ए कुज्जा दिरुले एनी माहौल तकुं एनेगे तुत्तु तुत्तु इरुक कंफतन इव्वादे अडु तकुं एनेगे मादरी बस बट्टम मिवाले एकम कुरुमट्टका मायंबे फायना आइलागे एहे मीस मीहुं वाहक दक्कम वी दिवेइ बहु साफु दिवेइ बहु वाहक दक्कम वी एनुं गोतकन हदन्या मिसालका मम्मे की दिवेइ बहुगे मीहेन नम मम्मा हम साफ दिवेइ बहु वाहक दक्कै बप्प बेनु मणी दरफला इंग्रेसी बहु वाहक दक्कन्या मसुनुनको बप्प वाहक दक्कम वी इंग्रेसी बहु एरा कुज्जाय विस्नेने तुत्तु इरुसुर मम्मा मि दक्कनी वकिबाकुन्ने बप्प मि दक्कनी वकिबाकुन्ने अहन्न मि देबसस मुहिम्मे कुज्जागे किबागे देबस अशगन्नानी एरुं एवरका एरुं ए कुज्जेगे मादरी बहुगे गुतगायवनी कितबस
1: देबस
0: एमबीम एई एगो फायदा है कि एबस मसले कमनु गिना बस बस एगुनु वरक एक मी मसले की मस्सुनि कोगेन दिवेही बस मोडेती एगोन एदीमा हला कोने गेतरीग दक्कन जेनी साफ दिवेही बों नूनी साफ इंग्रेस बस कोमस एगुते गहिफेटे तो बराबर मसके कुदे जे दिवेही राज्यगा नम दिवेही बस एई एममे स्कंदे जेर बाका मामा
1: तन दिवेही बहा मिहा मुसंद बस खुशारे लिबिफवायर ಕೀನತ ಹುರಿಹಾ ಲಫ್ಸಗೆ ಮಾನ ಸಿಕುಣಿಗ ಬಹಟ್ಟಣಿ ಹದಾಣುಗ
0: ಕೀನತ ಮುದರ್ರಿಸ ಮಿ ಲಫ್ಸುತ ಮಾನಾಗ ದರ್ಶಂ ಮಿವಾಗ ದಕ್ಕೆ ಏಯ್ ಆಹಾರಮೆನ್ ಹೆದಿ ಬೊಡುವಮುನ್ ಆಯಿರುಗ ಮಿಯಚಿಗೆ ಬೇನುಂ ಕುರುವೇನೆ ಅಡು ಇವಿ ಇವಿ ಇವಿ ಮಿಹಾರ್ ತಿಕುದಿನ್ನ ಮೇನೆ ಮಿ ಬೀರಟ್ಟೆ ದಿವೆಹಿ ಬೇಸ್ವರಿಕ ಮೆನ್ನೆ ಏಗೆ ಲಫ್ಸುತ ಕೆಕ್ಕಿಯ ಕಸ್ನೇಗೆ ದಿವೆಹಿ ಬೇಸ್ ಫಿಹಾರೆ ಎತಾಗ ಹುನ್ನ ನಂತ ಬಲಾಬ ಆರೋಳಿ ಬೇರೋಳಿ ಹಾಬಾರು kana hadung washaguli engo suri nana nu senge em eves daskuri mennu wani ema taulimuge terega deha hedumuga lentakun wahakatakun mudarrisun agga ko dimi una bas kosharutaka kudin ahulveri kuruvima mi cherangalwa
2: mi har kom me har etake kina basta ka bod tha araf amu mes mi har ema ja mi huri ha basta ka ka ko ilmu ongenoma ki do me muhim kamake
0: rangal ऐ मुहिम मुकामे अदबी दोस्त तकुगा बसकोशार मुबारक विस्बाबवमी ऐ रकुदिंग हितु दस्कुराने लफ्जुता ए बसकोशार मुबारक तुगे देमर हलाय बेबिदान ऐ मर हलाय की लफ्जुता दस्कोगें हितुं मीं उन्ना मी आगबहुं कियाल दिनु सवाल कुरीम देवन मर हलाय की एकले लफ्जुता बेनुं कोगें वी हागे लफ्जे बेनुं कोगें देइफावा सुरुखी एक गमच्चा मजमून लिया कुदिं लेमिंग हदा कुदिं एक गुगते कं कुरम फेट्टी वायती का नुआन एकवस दुनिया गनो उन्ना
2: ekam har mazmurna ka beenun ko liya gota wahaka dakkairu wahaka dakka gota wada tafaatanu ehaje mit dekamu ga liya nego wahaka dakkanu ga kihina tafaatu kula
0: liya ibara ta wahaka dakka ibara ta mulin tafaat ibara ta ge gotuga ungen muge terega fotta kun ge ema fokki ma heri liyam wago o adu hi ma eti wahaka dakka ge mit de hunaru daskuram mi gota tikudin wi fokki ang eim daskod dene liyu muge battanta tikudin wi mi hundakka wahaka adu ang erun egen tikudin wahaka dakka mi gotta हसीना दिया ही गया शे ए लियूं हसीना गया दिया एके गोगोता वाह का देख कुमुग हुन्ना ने तफातो दिवा दिमाग फसाब एचे दसवानी माहौलुं मी हूँ वाह का काडू है आगे रेडियो टीवी का मिकिया कल ड्रामा तक चाडू है वाह का देख कुमुगा बेनुं कुरा हम लियूं मुगे हम फसे ए फत्तन नुकिया लियम वी पेटान बट्टन ने गेन ए एक फसातना निम्मातना दिमानो जाय जेनी इबारातुक मसला ए मखीमा ಇವತ್ತು ಲಿಯಂಬ ಮಿಶ್ರಾ ಬೆಂಗ್

0: मिनी मंदोह के खास प्रोग्राम तो के तेरे
1: दिव्य राज्य के मिनिमम कम की तारीख
2: इंग्रेसिंग ऐतिहासिक हिमायत वे राज्य मिनिमम कल्पनों में तारीखी एग्रीमेंट का सही कुरेवुनी नवार से ते का फर्स्ट रस फर्स्ट पर नाहरों के जुलाई माह के सब बीस पर
0: दिव्य हिंग मिनिमम कंग मान पुरा गए

0: एक हतरफा है। अलगुन मेंगे लोबोत बप्पा गाफ अलिफ दांदु एशिया मूसा फतहिवणी देहा 26 जुलाई 17 गणिया वेफे वीमा बप्पा के मच्चेंगे विस्तारण नोत वसीत वाणमा देहा 26 अगस्त 30 वा आदित्य दोहगे कुरिंग अलगुन मेंना गुलवा इकनि मेफगे तमे आयला के फरातुं मोहम्मद रशीद फोन हते नुएंग एके सुमित तिने एकें आशे नाशिदा मूसा फोन हते फहें हते सुमे फहे सुमें एके मिदन वाले अमिल फरायतो के तेंड़ वुं मिहार गड़ीं हैक गड़ी फंसास मिनट फंसास नुआ सिकुंत बेफलों गड़ समते गिंद वनी तिवी राज जे गड़।
1: अंगादी उंगन नादी मुनि फोई फिलवा दिनु मुगा
2: थेदु वेरी कमायको
1: एकु वेरी कमायको
2: एरु वेस मिहारु वेस रायतुन्नायको रायतुन्ना एम्मे गातुगा दिवेहराज्चे के अडु
1: इंहा सतरस्ते का साली स्नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: हालो कबा मियादु की हैने
4: वारा रंगल
5: वारा फक्का हम
6: मियादु यहाँ रंगले नो
5: वाड़ बलिको
6: देंग ने कहा लगोते
4: हम वारा बेस्टो
5: देंग यहाँ यहाँ नो
3: एहुं तेरिंगे हाला हुआ लोड़ों फिलवाला वाह का दखा लो मा
0: कम में बुद्ध दो है गिरेगा डो एकार कट सुम मिनट का तिवी राज्य के अड़ों के निस्तेनी
6: मिया तो की हिने
7: इंहा सातरस्ते का 40 किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि 80 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: हांगार
1: अंगार दो में दुल कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट इरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होके रे में दमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हांगार
2: हम एक अन्य दिवे ही राज्य के आडू
3: मीजे होनी है कंधा का दिल आहे के नो मितनों एम में इंची विस्कुरिया के जस्सा देवे निवारों नुकुरिया मीम पिकअपे विस्कुरिया करनु चहें
4: एक्सक्यूज तांकोले तक कफारन दा
3: दत्ता मावेस मेरे नाम तांकोले नो दिविगन ने
4: आहरेंगे गे दोरुमती गे तीनी तिया पुरे तांकोले कुरिया व्यस फाहते व्यस जस्सा दे माह नगिया वादे वेनी
3: ऐहंता सॉरी
4: दरफ्ला समा तीता इंदेगे कोच इत्ता किए वेनी बेरुंग गे मेवे अडुफक गंडु लाहे केनु किया वाका
5: मम्मा वके मच्छंग एरेस किए वेता जहिकें हुरिगे लवजहा शोकुले अडुनु एहेन अडेन नीवे अति एगे मती बहादा अडुफक गंडा हेति बोलु करिस साहिबा
4: देन की कुरानी दरफुला एहेले कुडा मीहा इरुकोले नुआन निंदावा फमिनकु मेली फिहारे अदे मीउलुनी एन हेलम वायरा नमादा वेसारा
1: हमें माहौल दर्पण करूँगा, को मैं मीह कुछ एमीह के फर्दी सिर्मा अदा करूँगा।

0: के आसपास गोली चलाना बंद कर और सीधा गोली तन खोपड़ी में इसकी।
1: इस बारी
2: सामिरो हाथ वहां का मुफीम दिए अति तेज चही कीने भी
3: मैं तो हम तंकोला वह गया गन्न बेनु भी सारा आया की का वागुत कोला है तो कोलंग कम
2: ऐहें ता हाथ रंगले
3: मैं ती सारा आंखर गेना है चे
2: हाथी आए मियो मैं तो मैं की क्या माहर में गे इन्वासरी विष्णु आर नहीं वने सामेरो हांदान नितुनी है सा बस सामेरा मेरे वो ती सामेरो के रट्टी से के दरिफुलो के कैविनी पार्टी है आहार में के एनिवर्सरी पार्टी है नूने
3: आहार नतीकांगे एक वो कुछ आहार में तो हम सारे यहाँ दिया दे ही भी आहार में के कैविनी कुरी दोस हांदाम स्वी माँ बोड़ा
2: लो बिंगे मरे रीत मिया गुटी सामेरो के चॉइस सामेरो के टेस्ट हम हमारा सड़ी
3: ती शक के वैसे कम है नूने मगे आंखे उन ना बदल दी मावस इंगे ना मगे चॉइस की हार रंगलोक
2: आस्तु ऐसे मैं अंगोटी वारर रीती वारर वारर रीती अरे नून द सामेरो
3: रीती वारर रीती एक हम को सारा वारर रीचा
2: दिन ये वो कॉफी ये सादे टेचे बैनु दा
3: हाँ सारा या की कुविजिया कोमेचो सोके
2: मैं दादा रोमांटिक वेकिंग उले दो है क्या दो

0: हंगार अंगार दो मेंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
1: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं
3: ए कोड़ो को फाहत जेल अमा आहार में यहाँ कैरी गति में मी है उन दुगो आने ये ना जा पिंडम बनु फ्रेंड नहीं साबे गंती पे मारने
4: कोबा मिता हूँ ना डस्टबिन एहरी दो मेरे से डस्टबिन खाने लाम मारने
5: එංහස් 441 kHz medium wave 800 MHz FM band
6: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तरीका अहर में बहा सकाफता आदकादायक तेरेगा आद बावर घंत तक हुरे अडवहालं बेनं ता
2: हाँ वारा बेनो
3: दिविराज गण ट्यून कोला अंगार दुग हावीर फाहिज जहर बुरास दुग हावीर हाथरगड फनराग अदी आदित दुग हावीर फाहिज जहर हमें कनी दिविराज के आड़ो